दोस्तों, जिस तरह से गंगा नदी जिस प्रकार बिना किसी भेदभाव के सभी को तृप्त करती है और अविरल बहती है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने मन में बिना किसी पक्षपात के सभी के लिए प्रेम और करुणा का प्रवाह बनाए रखना चाहिए। ऊंच नीच, जात पात और अहंकार को